नियत से कायम होने वाली कंपनी कई सालों से मस्नूई मिनरल वाटर और टॉनिक दोनों की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: स्ट्रेटेजिक पोजीशन कहीं ज्यादा मजबूत है, अपना हॉर्मुज तकरीबन मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है।
1: मिस्र के जजीरा नुमा इलाके सीना में सुबह के वक्त पेश आने वाले बस हादसे में 16 अफराद हलाक हो गए। सियाहती कस्बों दहाब और नुबिया के दरमियान सफर करने वाले एक मुसाफिर बस के बेकाबू होकर उलटने के नतीजे में इस हादसे में 28 अफराद जख्मी भी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि जख्मियों को मुंतकिल करने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जाए वकूआ पर 20 एम्बुलेंसें भेज दी गई हैं।
0: इसराइल पुलिस के सरबराह की जान से मकबूजा मल के किनारे में फलस्तीनियों पर होने बढ़ते हुए हमलों बैन अक्वामी बरादरी में इसके असरात के हवाले से एक हैरानकुन इतराफ किया है। इसराइल पुलिस के कमिश्नर डेनी लेवी ने कहा, फलस्तीनी जमीनों पर गासपाना कब्जा करने वाली इसराइल की पुरतशद कार्रवाई की बिना पर पूरी दुनिया इसराइल को एक बदमाश मुजरम रियासत तसव्वुर करने लगी है। यदियुद अखरोन अखबार में शायद उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लेविन इस बात पर जोर दिया, मगरबी किनारे में इसराइल ग्रोहों की जानब से किए जाने वाले नस्ली जराइम ने मुल्क के तशख्स को शदीद ज़द पहुंचाई है। कमिश्नर लेविन अपने बयान में कहा, इसराइल ग्रोहों का सिर्फ एक ही मकसद है फलस्तीनियों पर हमले करना और उसके नतीजे में पूरी दुनिया हमें एक बदमाश कातिल रियासत के तौर पर देखती है। अब तो हमारे इतिहादी अमरीकी भी सूरत हाल से तंग आ चुके हैं।
1: अज़रबैजान के हुक्काम ने बताया है कि मंगल और बुध की दरमियानी रात एक असलहा डिपो में लगने वाली आग के नतीजे में धमाके शुरू होने के बाद 5,000 अफराद को वहां से निकाल लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगामी हालात दिफा और दाखिला की वजारतों के मुश्तरक बयान के मुताबिक ये आग मगरबी ज़िला गोरानबोए के गाँव निज़ामी के करीब वाक़ एक डिपो में लगी। हंगामी हालात और दिफा की वजारतों के अमले ने पुलिस और मकामी हुकाम के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और सूरत हाल को काबू में कर लिया। गोरानबोए के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीमूर नजारोफ ने सहाफ़ियों को बताया कि निज़ामी और उसके हमसाया गांव खुलू के 5,000 रिहायशियों को करीबी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आग अभी तक लगी हुई है और वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, ताहम आग को फैलने से रोकने और उसे बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी घर को नुकसान नहीं पहुँचा और ना ही किसी की मौत, जख्मी होने या किसी बड़े नुकसान की इत्तला मिली है।
0: चीनी सदर शी जिनपिंग दो रोज़ा दौरे पर मिस्र पहुंच गए हैं। नादिर दौरा कई माह से जारी मशरक वस्ता जंग के असरात के तनाजे में बीजिंग काहिर के अपने इक़्तिसादी मफादात को महफूज और बाहमी रवाबत को मजबूत बनाने की ख्वाहिश के मुहर्रिक के साथ तय पा रहा है। मंगल के रोज़ काहिर पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी ने कहलिए हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग उनकी अहलिया पेंग ली युआन का मिस्री लोक रक्स मोजारे के साथ इस्तकबाल किया। ईरानी तेल के बड़े खरीदारों में शामिल मुल्क चीन इस तनाज में खुद को एक गैर जानदार फ्रीक के तौर पर पेश करता रहा है। मुतअद्दिद बार मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर चुका है। मिस्री राय प्लाक के मुताबिक शी जिनपिंग आज बरोज बुध सदर अल-सीसी से मुलाकात करेंगे। मुजाकरात में गज़ा जंग, ईरान के साथ तल्लुकात, बोहरा अहमर और आबना हुर्मुज़ में बहरी नकल हमल के मामलों पर बातचीत मुतवक्को है।
1: गुज़िश्ता हफ्ते चीन और नेपाल की सरहद के करीब आने वाली अचानक सैलाबी लहरों और ज़मीन सरकने के बायस हलाकतों की तादाद बुध को जारी किए गए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बढ़कर 1,130 हो गई है, जबकि तकरीबन 4,500 अफराद ताहाल लापता हैं। नेपाल की कौमी अथॉरिटी बराए आफात का कहना है कि 26 अगस्त को मुल्क में शदीद सैलाब के बाद अब तक 1,114 लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि 292 अफराद जख्मी हुए हैं और 3,916 लापता हैं। हुकाम का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों से तकरीबन 12,000 अफराद को बचाया गया है, जबकि तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद के लिए फ़ौज और पुलिस समेत 21,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक नेपाल में सैलाब से तकरीबन 16 लाख अफराद मुतासर भी हुए हैं। शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि इसी आफत में चीन में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 546 लापता हैं। रियासती खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में लापता अफराद में 261 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं।
0: जॉन ट्रस्ट ने एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव का अहदा संभाल लिया। उन्होंने एक ऐसी कंपनी विरसे में मिली है जो स्मार्टफोन मार्केट पर तो राज करती है लेकिन मसनू जहां में अपने हरीफों से पीछे है। इस मुंतकली के साथ ही टिम कुक का 15 साल दौरे इकतदार खत्म हो गया। एप्पल की सप्लाई चेन बनाने वाले ऑपरेशन के माहिर की जगह अब इस इंजीनियर ने ले ली है। उसने कंपनी का हार्डवेयर डेवलपमेंट की क्यादत की थी। टिम कुक ने अमले के नाम एक मेमो में अपने जानशीन की तारीफ करते हुए लिखा कि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं दुनिया को बदलते हुए मसनूआत तैयार करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है। इसके साथ ही इस तरह तुर्किया से खबरें खत्म हुई।

0: चांदी के सितारे और कुरून वुस्ता से आज तक फैली उसकी कहानी का पीछा करेंगे। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
1: फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।